0: tsandabu kani chiri is, te chiri dhuwa dambu nabu chichi, dhuwa dambu. Yahi chu na ta tela nga rana suku pejin nabu chi, yatina hajanga tini yabu nabu chi yoshi. Tini nyingba da chiri isi dhila, shetan ka lo ta ladin jika ina yanda, di kasila, ani chiga desu ka tini dhayu yosu jirwa, te ani za korangu nung isi tiyo mara te, wenja temi sambo draga, shetan ka lo, अनि जाय जसि नाया जे चावनि नि मासु पाच रेस कते सुयना कना सुय रेस ओय जाय जसि नाया चावनि नि मासु पाच रेस कते जाय जसि नाया जे सुयना कना सुय रेस ते चिर जे दिल ट्वानि मार बतिर ट्वानि मार बतिर तने ट्वास बाद गान यिसे ना ट्वास बाद गान यिसे दिल आ तने यां जे ट्रिप दोजे गिन जे बिग जवान ता तने कानि से मेंग योरवा तने ग नला अनि लादेन जो कोरन्द लादेन गतनि दाय जोस द देन जोस सोसोते छिने छिने तें योरिस ओ जेवा द कनि से मेलो न दाय जोस द देन जोस ते सोसोते कन्दे छिने तें योरिस ओ तत छ गोंड बजि दि छिने त दस न छिरे छिने अ दिरि ग लोंदि न जेवि ग ट्वाक्स न ग जोंड बजि ओ तनि संगे नंबर ग देसो कोला अनि संगे र नथना अ याबो योसा दे तेन द दिरिंक दिसि जि बि छन्दना न याजि
1: Ah,